रेडियो टाइगर 99.2 MHz नामै काफी छ। रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम अहिले बिहानको 8 बजेको छ। यस टाइम चेकका साथमा केपी पोलिक्लिनिक दृगा बजार बर्दिया।

0: गर्जन सधै बागु झैं रेडियो टाइगर 99.2 MHz
1: रेडियो टाइगर स्टुडियो टाइम।
2: यति बेला साँझको 7 बजेको छ।
1: रेडियो टाइगर 99.2 MHz नामै काफी छ।

0: अपना उकरा अबर रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज बर्दिया से रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि सुन्ती बाटी है। यी कार्यक्रम रेडियो टाइगर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र संघले मिलकर तयार पर्लक हो।
1: अब हाम्रा एक गति कृषि सम्बन्धी छोटकरी मन गतिविधि सुनिए। धान लगैना बाँकी हुलक खेतवाके बरसातके पानी कुर्याक लाग प्लास्टिक पोखरी खल्ती बनाइक पर असिका कुर्याइल पानी धानके संवेदनशील चरणमा प्रयोग कैकन उत्पादनमा पर्ना असर हुन कम गर सक जाए। लगागेला धान बालीमा धर्रा व्यवस्थापन केला प्रेटिला कोलोर 25 लिटर पानीमा 75 ml के दरले एक रोपनी या 17 लिटर पानीमा 51 ml के दरले एक कठामा धान लगेला 5 दिन भित्र खेतोमा छिपछिपे पानीमा हुलक अवस्थामा प्लाट फेन नोजल के सहायता लिएर स्प्रे गर पर।
0: कृषि औ पशुपालन सम्बन्धी जिज्ञासा केलक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदकै पैसा नैलग्न नम्बर 1135 हरेक सोमबार सन्ध्याकै 5 बजेसम्म फोन गर सिक जाइ।
1: अब हाम्रा सुन्तीबाटी कृषि विशेष रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि कार्यक्रमका पुछारमा आशिकली आप पाला हिलबा हमार प्रश्न अपनक जवाब प्रश्न असिनबा राष्ट्रिय धान दिवस नेपालमा कौन महिना हो कै गते मना जाए प्रश्न फेक खरा राष्ट्रिय धान दिवस नेपालमा कौन महिना हो कै गते मना जाए एसएमएस मसेना उत्तर पठाका सहभागी बन सकी। यी प्रश्न के उत्तर अपनाउँगर जनलबाती कलसे 9858303961 मा आफ्न नाउँ ठेगाना सहित एक हप्ता भित्र एसएमएस मसेना उत्तर पठाका सहभागी बन सकी। सही उत्तर पठाइलक हुकनसे एक जहन गोला पठासे विजेता छानका कार्यक्रम के तरफ से एक ठो टी-शर्ट पौधा देने बाटी।
0: रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि सुन सेकल पाछ अपन मनमा लागल विचार र कृषि खेती के विषयमा कोनो प्रश्न ओ जिज्ञासा हुइल कलेसे अपने हुक्र अपन फोन मसे कह सिक्ने बाटी ओ एसएमएस इमेल मसे फेर लेखी सिक्ने बाटी अपन जवाबमा विचार ओ प्रश्न धरकला कृषि अनुसन्धान परिषदके पैसा निलग्न फोन नम्बर 1135 डेलक निर्देशन के आधारमा रेकर्ड कर सिक्ने बाटी पुस्तक रेडियो टाइगर के सम्पर्क नम्बर 0 84 40 31 88 ओ मोबाइल नम्बर 9858303961 मा फोन कैक रेकर्ड कराई ओ लिखाई फेर सिक्ने बाटी पुस्तक रेडियो टाइगर FM@gmail.com मा फेर अपन जिज्ञासा पठाइ सिक्ने बाटी।
1: लिटर रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि के और ऐना भाग में नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद के कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन हो। कृषि विज्ञ से लिखल सल्लाह सुझाव ऐना हप्ता में अपना एक जिना कृषि संबंधी ढेर जानकारी संग और मेर मेरी गतिविधि फैले ऐना भाग मन ध्यान होने नहीं बा कार्यक्रम का ऐना भाग के सुनती रवि कार्यक्रम सुन के सुझाव सलाह फेना लिख कर पठिने बाटिकना आशा करती राष्ट्रीय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र रेडियो टाइगर संघ संघरिया आरटीओ मैतिकाराम फिना विदा बिटी राम राम नमस्कार।